0: 0870 957 9340.
1: I'm Ayana Young, host, founder, and executive director of For the Wild. For the Wild focuses on land-based protection, co-liberation, and intersectional storytelling. We join some of the brightest thought leaders and visionaries of our time to uplift a multitude of perspectives, amplify grassroots voices, and tell stories that would otherwise disappear in mainstream media.
0: For the Wild on Manawatu People's Radio, Thursdays at 3 p.m.
1: Or find us online at www.forthewild.world.
2: Want something a bit smooth for your Wednesday afternoon? Tune in every Wednesday from 2 p.m. for an hour of smooth jazz in the Smooth Jazz Session with Alan Kirk, right here on Manawatu People's Radio. Te reo irirangi o ngā tangata o Manawatu.
3: The newsroom brings you global events as they happen.
4: While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
5: We will build back better from the COVID crisis with an answer to the many challenges New Zealand already faced.
3: With context and analysis to daily stories.
6: We cannot keep looking away from these things. We cannot keep sweeping these things under the carpet, these injustices.
3: The Newsroom from the BBC.
0: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
7: And
8: this is not a show.
7: This is not a show.
8: पतझड़ है.
7: पतझड़.
8: पतझड़ है.
7: पर कितना सुंदर है.
8: हाँ हाँ.
7: मतलब जो कलर्स हो रहे हैं ना. क्या मस्त कलर्स हो रहे हैं.
8: इतने कलर मैंने पेड़ पौधों पे मैं देखूंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था.
7: Actually. When you go to that windmill farm ऊपर, तो वहाँ से देखो कितने प्यारे रंग दिखते हैं. वैसे भी मतलब you know you go to summer hill उस तरफ दिखते हैं. You go to Massey University उस तरफ बहुत दिखते हैं. Bridge की तरफ जाओ वहाँ बहुत दिखते हैं. New bridge की तरफ. So इतने beautiful colors. You're right. मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ लाल हो सकते.
8: हाँ. वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मेरे को पेड़ पे पीच कलर दिखेगा
7: बिना फूल के. मतलब पेड़ पे कलर इज लाइक फॉर अस इट्स लाइक ग्रीन ब्राउन एंड कलर ऑफ द फ्लावर.
8: पत्तों की बात कर रहा हूँ.
7: हाँ.
8: मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था. एंड देयर इज दिस वो चेरी ब्लॉसम का पेड़.
7: हाँ हाँ पिंक.
8: हाँ. तो नॉट ओनली चेरी ब्लॉसम का कलर अलग है ठीक है मतलब बहुत अलग है बट उसके पत्तों का भी कलर अलग है.
7: Yeah, that's true.
8: मतलब उसके पत्तों पे भी कलर बहुत सारे.
7: उस पत्तों पे ग्रीन कलर है बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री.
8: हाँ. और अभी बिकॉज वो भी झड़ रहे हैं उनका भी कलर येलो मरून ऐसे हुआ जा रहा है.
7: नहीं वो तो है बहुत ब्यूटीफुल है. साउथ आइलैंड में ना एक जगह है.
8: साउथ आइलैंड में बहुत जगह है.
7: मतलब एक जगह है जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं. आई वाज देयर लाइक फ्यू इयर्स अगो. आई वाज देयर ड्यूरिंग दिस टाइम अप्रैल मई में मैं वहाँ पे थी और मुझे मतलब आई टुक सम फोटोज एंड आई फेल इन लव विद दोज फोटोज बिकॉज ऑफ द कलर्स. So if somebody asks me what is your favorite season in New Zealand, I always say autumn. I know मतलब summer भी है but autumn is like because of the colors. I just love autumn.
8: हाँ. For me autumn has been like very short always.
7: Okay.
8: ठीक है. up until
7: नहीं short ही होता है ना.
8: हाँ मतलब short मतलब इतना short के मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि autumn exactly होता क्या है. ठीक है क्योंकि Being in Mumbai, मेरे को इतना ज्यादा कुछ दिखा नहीं था या फिर मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया था. बट यहाँ पे इट्स जस्ट डिफरेंट. ओके. एंड पामी में देयर इज अ स्ट्रीट.
7: कहाँ पे?
8: पामी में देयर इज अ स्ट्रीट. एलमीरा स्ट्रीट.
7: ओके.
8: वो मेरा फेवरेट स्ट्रीट है.
7: अच्छा.

0: किसी ने मेरे को दिखाया था कि ये एक स्ट्रीट है, मतलब मैं पैकेज से जा रहा था, फ्लैटमेट के साथ जा रहा था, तो उसने मेरे को बोला था मैंने तेरे को एक जगह दिखाता हूँ, ठीक है दिखा मेरे को. तो ऑन द वे टू पैकेज से उसने वो अल्मीरा स्ट्रीट से लिया.
1: अच्छा.
0: तो उसने मेरे को बोला कि ये वाला स्ट्रीट ना मेरा एकदम फेवरेट स्ट्रीट है.
1: अच्छा.
0: मैंने उसको पूछा कि क्यों, तो उसने बोला कि तू अब देखेगा तब तेरे को खुद पता चलेगा. सो दैट्स वन स्ट्रीट जहाँ पे दोनों साइड पे सेम पौधे, सेम पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, और वो दोनों साइड से ऐसे एक टनल बनाते हैं.
1: अच्छा.
0: ओके. नाउ द थिंग इज ऐसा तो बहुत सारी जगह,
1: बहुत सारे जगह
0: पे
1: ऐसा, तो इंडिया में भी काफी जगह पे हमने देखा
0: है. हाँ, लेकिन ये वाले स्ट्रीट पे ना पता नहीं क्यों इट फील्स सो सिमेट्रिक.
1: ओ वाओ. हाँ,
0: दोनों साइड पे पौधे ऐसा लगता है कि इट इज सिमेट्रिक. एंड नॉट जस्ट दैट, इट कुड बी द ट्रीज, इट कुड बी समथिंग एल्स और वट एवर. हमेशा ऐसा लगता है कि जो पत्तियां है ना दे आर ग्लोइंग.
1: ग्लोइंग.
0: हाँ, ऐसा नहीं लगता है कि सनलाइट इज पासिंग थ्रू द लीव्स. ऐसा नहीं लगता.
1: वाओ.
0: ऐसा लगता है कि
1: वो इट बिकम्स अ कैनोपी काइंड ऑफ थिंग.
0: इट बिकम्स अ कैनोपी.
1: Yeah.
0: और मेरे को नहीं पता कि वो स्ट्रीट में क्या स्पेशल है या फिर वो पेड़ों में क्या स्पेशल है, बट इट लुक्स वेरी नाइस.
1: जब मैं पहली बार न्यूजीलैंड आई थी ना, तो मैंने क्राइस्टचर्च में लैंड किया था, एंड देन आई फ्लू टू वेलिंगटन, एंड देन आई केम टू पामी ऑफ कोर्स. तो मैं जब पामी आई और बाकी जगह पे मैं सोच रही थी यार ये मतलब कोई जगह कोई पेड़ के पत्ते इतने साफ कैसे हो सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता होता कि ये लोग रोज सुबह पानी डालते होंगे, मतलब ऐसा ना पानी छिड़कते होंगे करते होंगे. बट आई सॉ देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट इज द एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज सो क्लियर, इट इज सो क्लीन, इट इज सो ब्यूटिफुल. सो वो जो ग्रीन एंड क्लीन का जो है ना न्यूजीलैंड का, इट्स क्वाइट एप्ट.
0: जब मैं आया था, सो दैट वाज द 17th ऑफ फरवरी.
1: वाह. डेट भी याद है सर को.
0: हां, डेट भी याद है. नहीं, एक्चुअली सॉरी, 15th of February.
1: अच्छा.
0: सॉरी, 15th of February वाज द डे, एंड 17th of February वाज द फर्स्ट डे जब मैं यूनिवर्सिटी में एंट्री किया था. मैं मेन रोड से एंट्री किया था, जिधर वो लेफ्ट साइड पे स्टोन
1: ऐसे स्टोन पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, मैसी यूनिवर्सिटी,
0: वो वाला रास्ता. ये एग्री रिसर्च के ऑपोजिट वाला, वहाँ से मैंने एंटर किया था. तो दैट वाज द 17th. बट 15th को जब भी मैं पहुँचा था, तब जस्ट लाइक यू मैं पहले क्राइस्टचर्च आया. ठीक है, क्राइस्टचर्च से कलेक्टिंग फ्लाइट था मेरा पामी का.
1: अच्छा, तेरा सीधा पामी.
0: हाँ. तो मैं क्राइस्टचर्च पे उतरा, और जैसा कस्टम्स क्लियर हुआ तो ग्राउंड फ्लोर पे आया मैं. ठीक है, फिर मैंने बोला कि कनेक्टिंग फ्लाइट किधर है, तो आई हैड टू गो अपस्टेयर्स. मैं ऊपर गया और मैंने बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता. मेरे को बहुत भूख लगी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहाऊं. मेरे को लग रहा था कि मैं अभी मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, अभी मेरे को कुछ खाना है और मेरे को सोना भी है. बट मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ना वॉशरूम देख रहा हूँ, ना कुछ भी देख रहा हूँ, ना मैं कुछ खाना देख रहा हूँ. मैं पहले जाके अपने गेट पे जाके बैठता हूँ. सो इट वॉज अपस्टेयर्स एक लेवल पे, और वो जहाँ पे मेरा गेट था वो है, मतलब टर्मिनल में एक गेट है जहाँ पर एक ऐसी फ्लोर टू सीलिंग ऐसा ग्लास है. Okay. और वहाँ से आपको एयरप्लेन दिखता है. ठीक है, रनवे दिखता
1: है. यू कैन सी दैट.
0: हाँ, बट मतलब ऐसा ना वाइड नहीं था, इतना एक्सपांस नहीं था, वो पतला सा ही था. और तब हो रही थी बारिश, ओवरकास्ट था, बारिश थी. और तभी मेरे को पहली बार लगा कि मैं ऐसे जगह में आया हूँ जहाँ पे वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा ओवरकास्ट रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा ग्लूमी उमी सा रहता है.
1: ओह माय गॉड, दैट इज डिप्रेसिंग.
0: हाँ, मैंने बोला कि यार मैं अभी मतलब 8 घंटे पहले, 8-10 घंटे पहले मैं चेंगी भी था.

0: ठीक है, जो मजे किए मैंने एयरपोर्ट पे, बटरफ्लाई देखे, पॉड्स देखे, टर्मिनल देखे, जूल देखा, खाना खाया, घूमा मस्त, और सनी, एवरीथिंग वाज सनी. फिर मैंने एयरपोर्ट पे ये नज़ारा देखा वेदर पे. मैंने बोला कि ओके, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो सनलाइट ग्रीन और वो सब कुछ है ना, वो इधर कुछ दिखने वाला ही नहीं, इधर मेरे को सब कुछ ग्रे दिख रहा है. अभी मेरे को सब कुछ वाइट, ग्रे, ब्लैक, यही दिख रहा है. कोई अगर मेरे को तभी कहता कि तेरे को ये जो सीन दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट इतने पैलेट मिलेंगे कि तू खुद डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, मैं शायद नहीं मानता उसको. बट आई एम रियली हैप्पी कि
1: यू वर रॉन्ग.
0: हाँ, कि मेरे को ऐसे देखने को मिलता है. जब भी रेंगेटी की स्ट्रीट से अपन फील्डिंग की तरफ जाते ना,
1: हाँ,
0: तो जब भी शाम के टाइम में सनसेट दिखता
1: है,
0: तभी वो रास्ता देखने का
1: बहुत अच्छा है. वहाँ पे कभी कभी ड्राइव करने में इशू होता है क्योंकि सन एकदम सामने आ जाता है.
0: But then you have to observe the colors.
1: I know, beautiful. और एक और बात बतानी है मुझे तुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक गाना चलाते पहले.
0: अच्छा. आज ओके, ठीक है, मैं शुभ का गाना बजाता हूँ.
1: किसका?
0: शुभ.
1: शुभ.
0: शुभ.
1: हाँ.
0: आर्टिस्ट है.
1: आर्टिस्ट है.
0: पंजाबी गाने गाता है.
1: ओके, बजाइए.
0: ठीक है, उसका गाना बजाता हूँ. आई थिंक फेल फॉर यू. ठीक है, चलो सुनते.
1: फेल फॉर यू.
0: फेल फॉर यू.
1: वाह, ये तो इंग्लिश के आर्टिस्ट लग रहे हैं.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कुछ पंजाबी गानों का ये इट्स अ थिंग कि
1: एक लाइन इंग्लिश की गुस्सा दो.
0: वो नहीं, वो तो होता ही है. बट गाने का टाइटल इज इंग्लिश.
1: अच्छा. बट गाना पूरा पंजाबी.
0: गाना पूरा पंजाबी है.
1: ठीक.
0: जैसे करण औजला का गाना, गाने का नाम है, गाने का टाइटल है बॉयफ्रेंड. बट गाना शुरू होता है अबाउट अ गर्ल बीइंग सैट डाउन बाय हर पेरेंट्स, और वो उसको लड़कों की फोटोज दिखा रहे हैं.
1: अच्छा.
0: कि ये पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या. एंड द एंटायर सॉन्ग इज दैट गर्ल सिंगिंग टू हर मदर एंड फादर एंड एवरीबॉडी दैट आई हैव अ आई लाइक समवन.
1: अच्छा.
0: इसीलिए गाने का नाम है बॉयफ्रेंड.
1: बॉयफ्रेंड.
0: ठीक है, इंग्लिश. एंड देन देन शुभ का देयर इज वन सॉन्ग मुझे पसंद है. मुझे काफी पसंद है. गाने का नाम है वन लव. लेकिन उसमें गाने का इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है उसमें.
1: अच्छा, एक प्यार है ना उसका.
0: हाँ, मतलब
1: पर कुछ तो होगा ना एक प्यार से रिलेटेड
0: गाना है. मुझे पता नहीं, मीनिंग पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक.
1: अच्छा.
0: बट इट सो दैट्स द ट्रेंड. सो ये गाने का नाम है फेल फॉर यू.
1: फेल फॉर यू. ठीक है.